दूसरा गाना हिंदी गाना है, सो फिल्म का नाम मैनू याद नहीं है कौन सी फिल्म है। ये भी दो गाना है, बहुत मकबूल होया और सुनने के नहीं।

तेरी शांत जी तस्वीर पानी नाल दी वगदी निवाणा वालों पे मैं विसरे हुए गीता वांगू सुनती तेरी आखी हुई गल नू मैं ता सजना खामोश हुई रहनी हाँ वे लोगों के घट बोलती मैनू अज भी नेखंभ लग जाते जे लंघा तेरे पिंड कोल दी।